दृष्ट दर्शनी शब्द सुरत ही बुद्ध बल ही सुदो हस्त न पावली चित्तहीन पे।

जब लवनी आग लीलार तुझे तब लव भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत्व विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कर लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संगतों वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी ने अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतों की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो माध गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो तंदुरु रात दस गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र में मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगतों प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा के कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है तेरी सारी संगत रात का समय प्यार इज भी है ते अरदास कर रही है मेरा

से प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चातक की जान कृपा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गुरु कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहते हैं प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कला प्रशादी देंगे जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत को सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन को प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कला प्रसाद ही दे जा रही है उठो पहले अरदास करो सिख में जो भी गुरु अरदास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद में सह सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद की देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अदू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कला प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथां जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल छकाया जूठे भांडे कौन मांग रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का करते हैं प्यार करके करते हैं।

मात्र नहीं कमाई करके दुनिया में देखते हो तो राशन कहीं कर सकते शासन सेव सिख पूजन सब आवे सब गावे हर उत्तम बाणी अदू केंद्र गावे या सुनिया हर तिर का छाए पावे जिन सतगुरु की आ गया सत सत के तो कमाई कर अपना प्रगति कर जीवन बना के फिर कीर्तन कई बार ये भी कह देंगे सब भी थोड़े भी कंजन की फर्क कई बार कह बाबा जी ने क्योंकि बख्शिश कर देता था कहना थोड़े पिंड की फर्क है साल थोड़े को भी अनुना को शब्दों भी पढ़ लेंगे तुम भी पढ़ राग उन्होंने भी आते फर्क पाई भी यही है गुरमुखता साते मन ये गुरमुखता नहीं आई तो कोई सब तो गुरमुखता सीखनी है वो गुरु नाल जुड़ी अपना प्रैक्टिकल ऐसा को ना धन गुरु अर्जुन देव पातशाह एवं पंक्तियां उचारियां नहीं धन गुरु रामदास पातशाह जी ने अमन पै करते हैं नाले पखा फेरते हैं नाले पढ़ते हैं।

फूटी किसी राह ने क्या सास नहीं उठो तैयारी करो कमर कसे कर लो हूं पहुंचिए करिए गुरु दे सारी संगत त्याय तुर पई है गुरु दे नाले तुरे जाते नाले शब्द की धारना पड़ गई क्योंकि सिख जिस वे गुरु वाल सुनता है निंदिया चुगली करता नहीं शब्द की धारना शब्ददार हूं ता जो उतों ही आदमी शुरू हो जाती है गुरु के दर्द लगनी संगत तुरी जाती है पढ़ भी जाती है।

कुर्बान जाएंगे तो मुझसे खा नहीं तू होती सदगुरु आप समझे फिर के चौदह रसड़े प्यारे कल तिना के पास तोड़ तिना की से मिले जी कौ नानक की बाबा पिता जी पहुंच गए जाके साहबा जी उसको जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूप करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तू ही नहीं कॉपी अभी उसने यार ये सोने सुख तू भी छोड़ दी पाचा इतने बैठे हो जोड़े पे चार लो हजूर कह लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन की तीर तरह नीज ला के वेखे जोड़ा किसता है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पर संगत हर प्रभु गुरु कितने लेंगे नेत्रा चाहे हिरदे पे भी खातिया रिश्ता गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने पातशाह पर आप इतने सुन संगत वाल वेख इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जी पुल की जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़िया जेदे को जी दान लेना सी नारे की बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा से अजू श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान हुए हरिमंदर साहब जी का ध्यान रखे प्यारे शासन बोलो संगत दी नजर नहीं तरप्र वाजू जा रहे गुरु ने कोशिश की थी ते क्या प्यारी शासन रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे गुरु कह लगे नहीं पातशाह इतनी खेचला की हजूर कह लगे थोड़े प्यार के उत्ते प्यार की ज्योति प्यारे दे दीदा नक्श लाओ हजूर कह लगे पहला पंक्ति पढ़ो जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी फिर स्वराज चितवो वर्दी नींद संगत ने फिर घर के पड़े हैं अगली पंक्ति पढ़ लगे हजूर कह लगे ठहर अगली पंक्ति कह खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संघ भी आओ फिर थोड़े पहला मन दे किवाड़ तक खोलिए मन दे किवाड़ दरवाजे जे पूरा गुरु ही खोल सकते दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक खोल जिसे बख्शिश कर किसी महापुरुष ने लिखे मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लाओ मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती पाई हर पासे गुरु नानक बैठा निरंकार छबलाई चरना विच पदम है सोना जो दुनिया उठारे चल सूरज इथे पानी भर दे मानक मोती सारे ला दिता हुआ सज्जन फाक का ला दिता सी भूमि डाकू का ला आओ प्यारे हो मेरे बच्चे थोड़ा भी बुआ ला सारी संगत थके हुए हजू ने अमेर दृष्टि सारे वो थकिया बख्शिश की थी देखिया जपो सतनाम दी बख्शिश द्वारा ओ नाम रसना द्वारा हिरदे से जाके वसिया प्यारी सार संगत नाम का धक्का जिसने वजह भूआ फुर गया अंदर से बाहर नाम ही दिस लग गया अखोत्री अजू कह लगे हूं पढ़ो संगत ने फिर पढ़िया खोल कपट गुर मेलिया नानक हस्ती बख्शिश अजू कह लगे जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है गुरु उसके सहमत करता है बख्श गुरु ने बख्शिश संगत से की थोड़े उत्ते भी की है क्योंकि जो संगत को लैन वास्ते पंजवा गुरु नानक आप गया है तो भी गुरु नहीं लिया कुछ एक दिन नहीं केडे पाठा वाले हो प्यारे एक वीक पूरा माताओं भैणा बच्चिया गुरु बुजुर्ग वीर अधि नागा नहीं पाए एक नागा भी कीर्तन नहीं पाया बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु ने दर्शन च नागा नहीं पाता गुरु मेरा जनागा नहीं पाता ये तो सीधी है सारी संगत ने मत्था टेकिया पातशाह एडी रहमत हजूर कह लगे हाँ सात संगत ए प्यार गुरु कार्य ए बख्शिश है चल सर्व गुरु एक पैंडा जाए चल सदगुरु और पैंडा
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈ ਦੱਸੋ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਛੇ ਕਲਾਸਾਂ ਛੇ ਲੈਸਨ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੌ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਪਰਮ ਤੁਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮਾਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਦਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਵਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸਤਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਸਭ ਔਗਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਮੱਤ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹਟਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾਈ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਥੋੜਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਖਾ ਲਈ ਜੇ ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਲਗੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਣ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀੜੇ ਹੀ ਨਾ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਲੋਣੇ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣੇ ਮਾਰਗ ਨਾਦ ਕੀਏ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਓ ਏਕ ਜਗ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਸਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਇੱਕ
तो खड़े न खाओ, ये जरा मन विकारी हो, मन बुरे पास के जाओ और खाने छड़ो। ये कितना थोड़ा समय है, बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा समय जिस अमृत वेला तो नहीं, क्योंकि अमृत वेला खास तक छेवी पौड़ी केड़ी है। ऐसा जी कह लगे सतगुरु का उपदेश कमाल, गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चौड़े स्वागत कौन है, जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है, जो माता पिता का हुक्म है सर, सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है, जो गुरु का हुक्म अमृत छकना बाणी पढ़नी सत्संग में जुड़ना बुरे कमा छड़ना चंगे ही अपने बनी, ये गुरु का हुक्म है। गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है, पर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुरु का उपदेश कमावे। जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है, छे क्लासा पढ़ जाता है, तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है, फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है, तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज सोनू सहज अवस्था की प्राप्ति बार मिलियां संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी धन हो, इतों के प्रबंधक भी धन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां भरी, बड़ी संगत जुड़ती। अब गुरमुख माई आए एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नूह पेट कर, नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिखा जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है। कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई, मालिक मेहर करे वस्तु सानू सदा लागे, गुरुद्वारे बेशक बना लो कोई हर्ज नहीं, गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है, पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक सहब श्री गुरु साहब जी की पूजा, गुरु की संगत, गुरु नानक का नाम, गुरु नानक की बाणी, गुरु नानक का ध्यान, जब सत्संग से जितने चार चीजा हो गई। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर हो गए, अब कोई समा ज्यादा हो गया है, पर ज्यादा होया जाया नहीं है, क्योंकि अब इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात दरा तो कुछ समा चढ़ गया है। अब सवेरे जिसने कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिछली साल वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड हुई ते वो साखी सुनी है, चित करता है फिर फिर सुना दे उन्हां दा हुक्म सच है, क्योंकि बाबा जी दे पिंड दे नेड़े ही रहण वाले सौकिया दे रहण वाले उन्हां दा हुक्म ते तुहाडा प्यार पिछली साल वाली साखी आप जी ने समा कुछ ज्यादा हुआ तो समा सफ रहे आई करी लगती जो सौ साल भी आवे तो तुहाडे प्यार को वेख के सेवक का चित बड़ा पसंद है, नहीं तो इतना चिर रहना बड़ा कठिन। अरे गुरु की बख्शिश है, यही रहमत है गुरु की जो साडा मन बुद्ध नाल जुड़िया है, तो आओ अरदास करिए अनंत वचन दे पातशाह साढ़े से बख्शिश करो, ये जड़िया मंजिला हैं गुरमुखरी दे गरीबी ये सारिया पौड़िया असि महीना से चढ़ने की कोशिश करिए, आस्ता आस्ता ये दाल ये मंदिर साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मनु यात्रा खत्म साधा जी।

गोपाल गोविंद ना कब झोरिया देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ न जाए सूर्य।

जन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहाए।

ना डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखा अपने ही मन को लाल जहां गुटा उतरे और सिखाओ अपने ही मन को लाल जहां

के सरबान के तख्त साके सरबान के ना आप लडू ना फौज लड़ाऊं ना आप लडू ना फौज लड़ाऊं पदवीर से ती बांध मंगाऊं ना छाडू खालक ना छाडू बालक ना छाडू खालक ना

पर ही जब जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे, अग आग करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

दुख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगा जाए सचा पिण मल्या सच्ची दरगा जाए सचा पिण मल्या सच्ची दरगा जाए सचा पिण मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका।

जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्या फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वेता सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गरीब बनवाए दातार जियो सब थाई होए सहाय दसां पातशाहीं दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब

सूत कलहे न कीरिया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार वसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।

0: जो आया सो चल की सबको आई वाली है, इसके जीता है तो सर्वण विचारी है अपना
1: मिठा पैसा दान कर खुश हूँ।

राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरुण कीता है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार योग साडे पिता जी गायन करदे ने, तो आओ इस रीत राग बिहाग दी है, हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरुण करो।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों पर नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला दा ये शब्द इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा त्रिही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब जब तिर ही नहीं तिरवाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना। श्रृंगार ते पिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं ते बिना पिर तो श्रृंगार करन वाली औरत नूं कहिंदे हन दर घर ढोई नाल है। उसनूं ना दर घर दे विच किते भी कोई ढोई नहीं हुंदी। दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच ओह झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते ओह खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नूं पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जद तेरा अंदर ही गलिया पिया है सब गुण तेरे गल चुके हैं अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी तेरे सारे ही गुण गल गए हैं सारे तेरे गुण गल गए हैं फिर तो दूर जान नाल फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी औरत सी एकाया जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई फिर तू सुहागण ना रही फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असी सुनिया सी ना हर बिसरत तेरे गुण गले जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं अंदर टोटल रॉटन हो चुका है ते तेरे बाहरले श्रृंगार बाहरलियां सुगंधियां बाहरली सजावट मांग छपाया होया संधूर पहने हुए गहने कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नूं छुपा सकेंगे। जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं रॉटन हो चुके हैं अंदर तेरी भी ए तस्वीर है तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ है। गुण गल चुके हैं आज देश कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना है क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ

इसका अर्थ हर गुण गंफो, गंफो मैंने माला प्रभु, हार प्रभु, गुंदो केंदे हर गुण हरी दे।

सुरत शब्द का समेल हुंदा है, सुरती दे नाल ध्यान दे नाल अपने अंदर उस परम जोत नू अनुभव किया जाता है। सुरती दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नाल लिव लगाई जाती है, पर असी की उस हुणे ही उस अवस्था च हां कि असी उह कर सकांगे। साडा तो मन जिहड़ा असी पाठ करन बैठांगे तो इधर उधर खिंड जाएगा, वो एडवांस लैवल है। भगती की एक स्टेज दे विच ज्ञान बड़ा परिपक् हुंदा है, गुरु का ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, तपा का तप है गुरु के ज्ञान नू अपने अंदर उतार लैना, गुरु के ज्ञान नाल अपने जीवन नू अपने विचारां नू भर लेना, अपने विचार अपने ना रहन, सिर्फ गुरु के विचार ही विचार साडे अंदर रह जाण, अते उना विचारां नू एक्सरसाइज करनी, ये भी एक मंजिल है। तो अलग अलग अवस्थावां हन। दास तो अज भी पुछया गया कि यह सब कुछ सुनिया है पर असा हुण की करना है। असी हाईएस्ट लैवल तो आरंभ कर नहीं सकते कि बहुत कोई उच्चे अभ्यास की गल की जाए कि सुरती नूं दसम द्वार च किवें टिकाओ, त्रिकुटी च किवें टिकाओ, वो ते काफी सारी अवस्था बनन तो बाद काफी सारा सिमरन अभ्यास बोल के करन तो बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो परिपक् हुंदा है तो फिर असीं उस अवस्था ते जाने। सब तो पहला ते सानू भगती करन दे वास्ते जेड़े जरूरी गुण हन उही धारण करने पैणगे ते उही सिखने पैणगे। जे उठना बैठना ही नहीं आंदा, गुणा दा भाव उठना बैठना ही नहीं आंदा, खाना पीना ही नहीं आंदा, बोलना चलना ही नहीं आंदा, ते गल्लां असीं करिए बहुत डीप लैवल दियां, ब्रह्म ज्ञान दियां, सुरती दे अभ्यास दियां, सुरती दा अभ्यास किवें हो सकदा है, सुरत शब्द का अभ्यास किवें हो सकता है। अंदर वो इतनी सूक्ष्म वस्तु है, हर जी सूक्ष्म अगम है कहो कितविद मिलिया जाए, वो इतना सूक्ष्म है, मत साड़ी इतनी मोटी है कि जिसनू उठना बैठना नहीं आता, वो मोटी मत वो सूक्ष्म वस्तु नू एकदम किस तरह नोटिस कर लेगी, किस तरह उसके नाल जुड़ जाएगी, जिसका ना कोई रूप ना रेख ना रंग आकार शकल कुछ भी नहीं है, असी उस दे नाल किवें जुड़ सकते हाँ जबकि असी सामने जींदियां चीजां दे नाल सही तरह जो है इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब सानू उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ये तमाम जीवन दे विच जो वर्तों च लियाउण वाले शुभ गुण हन, अगर यही नहीं आंदे तो सब तो पहला सानू वो गुण सीखने पैणगे। बाबा जी बाणी दे विच आखदे हन निर्गुण राम गुणे वस होए, उसने जिथे गुणा दी धरती तैयार है उथे वस आना है, उथे उसने अपीयर होना है। निर्गुण राम गुणे वस होए, ते तेरे गुण गल चुके हैं, किवें आवे तेरे नेड़े, तू जो मर्जी कर ले, पहला ओ शुभ गुण धारण कर, शुभ गुण सिख। महाराज जी बाणी की पंक्ति इस सब्जेक्ट के उत्ते एक एक जो आप जी सुनावांगा वो हीरे लालां दे विच जड़न वालियां पंक्तियां हन। कहिंदे हन सुहागणी शिंगार बनाया गुण का गलहार, सुहागणा ने रब दियां सुहागणा ने कहिंदे अपने आप नूं सजा लिया कादे नाल, गुण का गलहार, गुणा दा गल दे विच हार पहन लिया, गुण ही गुण हन, एक भी अवगुण नजर नहीं आता उन्होंने अंदर, एक भी अवगुण नजर नहीं आता। जब तक एक भी अवगुण है उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने नजदीक नहीं आना। और आप जिन्हों एक लाइन होर बहुत जो गहरी है, बहुत डूंगी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की, वो भी सुनावा। लोग नाम दी गल करते हैं, नाम दी महाराज जी आखते हैं नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना, नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना। और हुण पंक्ति सुनो क्योंकि मेरी

सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों वो पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जाती है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई हो, श्रृंगारी पई हो। पर केड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना, इस श्रृंगार बना। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जो लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ऐ असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देन वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देन वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यों ल्यों कर फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते हैं। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नू एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शन दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भगती आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभा दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकता, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनू अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगंध कसम लाओ महाराज के चरणों च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस हुए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना, वह अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नूं सुपीरियर ना समझना। ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये आदतां हन, ये सुभा हन, पहला ये तारण करने हैं।
अज असी भगती दी ग्राउंड शुरू कर रहे हैं कि भगती करनी किवें। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत, निम्रता सुपीरियर अपने आप नूं किसे तो ना समझना ते अपने आप तो किसे नूं इनफीरियर भी ना समझना, एक गुण। एक होर साडे च अवगुण है, उस अवगुण नूं भी दूर करना है, वो है सब सलाह है आपको। हर बंदा अपने आप नूं सलाउंदा है, अपने आप दी आप ही प्रेज करदा है। हाउ अगली इज दैट, ए अवगुण है। कदे अपने आप नूं सलाहो ना ते दूसरे नूं निंदो ना। दूसरे नूं निंदते ही इस करके हाँ क्योंकि इंटेंशन दे विच असीं अपने आप नूं प्रूव करना चाहते हाँ कि आई एम बैटर देन दैट। सब सलाह है आपको वडो वडेरी हो, सारे अपने आप नूं सलांदे हैं, जस्टिफाई करदे हैं, अपने आप नूं ना सलाहो। जे अपने आप नूं सलाहण लग गए तो फिर अपने अवगुण नहीं तुसीं देख सकोगे, अपने अवगुण नहीं देख सकोगे। तमाम किस्म दे अवगुणा उत्ते नजर मारनी है। महाराज जी आखदे हैं ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, बहुता ज्यादा बोलना नहीं है घट बोलना है, यह भी गुण है। जे थोड़ा जा ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान दे नाल जिन्हां दे पास बेचारे पास घट है उसनू ढा नहीं लेना। If you are master of the language, then you do not use your language to conquer others. किसी भी तरह ज्यादा नहीं बोलना है किसी भी फील्ड के लिए। कहंदे सब तो बड़ा एक गुण है ऊंचा नहीं कहना। जे को वाहिगुरु ने शक्ति दिती है, कोई ताकत दिती है, कोई सिफत दिती है, कहते हैं उसनूं जरना है, अपने अंदर ही अंदर रखना है, उसनूं जाहिर नहीं होने देना। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जाना। भक्तां की चाल निराली, चालां निराली भक्तां केरी, विखम मार्ग चलना, लव लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, घट बोलन की आदत बनानी। जे कितने पांच सात बंदे की कन्वर्सेशन भी चल रही है तो उत्थे जरूरी नहीं कि अपनी ओपिनियन इंसल्ट करनी ही करनी है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जाने, बहुत नहीं बोलना। यह तमाम किस्म के गुण हैं। खान पीन उत्ते भी गल आती है, खाण पीण उत्ते भी गल आती है। कहते हैं सेव की संतोखी, जिनी सचो सच त्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खा, अन्न पानी थोड़ा खा। थोड़ा खाण तो भाव भुखे रहना नहीं, थोड़ा खाण तो भाव यह है कि जो असी अननेसेसरी अपनी बॉडी नू टेस्ट दे के गजाने हैं उस दे विच सिंपलिसिटी लियानी है, सादगी लियानी है, उस दे विच जो बहुत बड़ा अडंबर असी करते हैं उसनू कटाना है। महाराज कहते हैं सील संजम सुच पन्नी, खाना खाज आहाज, सारे अवगुण ही हैं। सील का मतलब मिठास, सुच का तो अज साडे अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया, सुच नूं असीं जानदे ही नहीं। अज साडे अंदर सुच नहीं रह गई, बिल्कुल नहीं रह गई, आपे चक्की जाओ और आपे खाई जाओ। सील संजम, संजम का अर्थ है डिसिप्लिन, ये सारे गुण हैं। डिसिप्लिन दे विच लाइफ होनी चाहिए है कि इतने बजे ही मैं खाना है और इस तो अलावा मैं खाना नहीं, इतना खाना है, इस तो ज्यादा
कोई परसू भी करे तां भी मैं खाना नहीं, वो संजम है। इतने बजे मैं जाग जाना है क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करने दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करने दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियों च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसी? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है। उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील संजम सुच, सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नूं वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नूं सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असि नाले खाई जाने हैं, नाले लिखी जाने हैं, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही झूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी, कहते पन्न दिती है, ये अवगुण है। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही, ये बनाया किसने है, किमें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है या नहीं बनाया, खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खान लग पे। रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं, तुसी कदे सोचो तो सही, वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन की शांति चे प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने वो तैयार किया है, तो असीं बाहर बैठ के उसनू रैलिश करते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन, कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा हो कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू वी नो, पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछने लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माई ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि What is the reason you are not taking even tea from us, anything, even water? मैं क्या इस दा कारण ये है कि इक्को ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोकां दे जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं क्या हैव यू वॉश यूर हैंड्स, कहिंदी नो, मैं क्या देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश यूर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहते हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट, इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ये अवगुण हैं, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ये तमाम पहनना ये सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चिंगियाईया तत, फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए, फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए, फिका दरगा सटिए मूर थुक्का फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए, पाणा जुतियां नू आखते हैं, कहते हैं दरगाह उसके जुतियां पैंदी हूं। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिका बोले हो तो तुहाडे उते आ कुछ लागू हुंदा है, फिका दरगा सटिए मूर थुक्का फिके पाए,
ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਉਸਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਕਿ ਮੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਥ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਨੈਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਸੰਤ ਸਮਾਪਤ।